0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: एक यूथ जस्टिस वर्कर के रूप में आप हिरासत में लिए गए युवाओं की मदद करेंगे। यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसमें वेतनीय प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें। ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबोर्न।
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: क्या आप जानते हैं कि मेलबर्न में खसरा मतलब मीजल्स फिर से फैल रहा है और मामले बढ़ रहे हैं? यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकता है। अच्छी खबर यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज आपको और आपके परिवार को मजबूत सुरक्षा देती है। आप अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीका लगवा सकते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा मतलब मजबूत समुदाय।
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी, कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहाँ देखें चमकते खनिज, टिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: यदि आपने हमारी पहले भी सदस्यता ली है तो आपका धन्यवाद। आपके सहयोग से ही यह कार्यक्रम चलता रहा। आपकी वजह से आपके समुदाय की आवाज ऑन एयर है। अब समय है अपनी सदस्यता को नवीनीकरण करने का। सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसका हिस्सा भी बनिए। फिर से हमसे जुड़े सिर्फ $11 कंसेशन के लिए या $16 फुल। tzzz.com.au पर जाएं या हमें कॉल करें 9415-1928 पर। क्या आपको लगता है कि खसरा सिर्फ बच्चों की हल्की बीमारी है? गलत धारणा। क्या आपको लगता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? यह भी गलत धारणा है। मेलबर्न में खसरा फिर से फैल रहा है और यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। यह बहुत तेजी से फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। सच्चाई यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं और यह भी सच है कि यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध है। अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीकाकरण करवाइए।
0: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
5: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं, अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
4: मेलबर्न म्यूजियम की की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM।
6: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा।

0: stressing, unless, of course, there are, you know, sometimes one has to separate.
1: Yes.
0: And maybe, you know, people generally tend to go to the system in regard to their country of origin. And, you know, I think the system in the country of origin is that people go to the lawyers. Yeah.
1: Yes.
0: And maybe that is what they're inclined to do. And that's fine. That's what they do. But the lawyers over here, they always guide them and they say, look, you need to attempt FDR first. Because that is something that the lawyers say to all the clients.
1: Okay. The take on from this discussion is that anyone who is struggling in their relationship, firstly, they should look for a counselor.
0: You know, that is interesting. You know, kai baar Palvi ji aise hota hai ki some people have made up their mind ki unko ye rishta nahi chahiye. So people who have made up their mind ki maine is rishte mein nahi rehna for their own reasons, you know, that the best, you know, that they know, then they are very clear that we are not going to reconcile.
1: Yes.
0: Yeah. But definitely, you know, there would be parties, you know, who want to reconcile. Reconciliation can only take place if both parties want it. अगर दोनों पार्टीज चाहेंगे कि हमको ये रिश्ता निभाना है और करना है, बट हाउ एवर वी नीड टू ट्वीक इट. गाड़ी जब हमारी खराब होती है, उसका एक्सल खराब होता है, हम क्या करते हैं? वी टेक इट टू द मैकेनिक, इजंट इट? एंड दे से जी इसको ठीक कर दो, है ना, बिकॉज यू लर्न स्ट्रेटजीज एंड यू नो द डॉक्टर विल टेल अस ये नहीं करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, वट एवर इट इज. सो इवन इन रिलेशनशिप पल्लवी, ऐसा है कि वेन वी आर इन आर ओन कंट्री, यू नो, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अराउंड अस. And that cushion is, you know, our family members, our friends, it's a familiar environment, there's a sense of belonging, you know, we are comfortable. But yes, when we come to a foreign land, you know, and, you know, sometimes, you know, we are new and we've just married, we don't know each other that well, you don't know whom to turn to. There is no cushion.
1: Yes.
0: You see, the lifestyle over here is very different from what it is, what people experience back home. You know, here, obviously, yes, we all work. It's a DIY culture, you know, do-it-yourself, yes, sort of culture, you know. So we are a bit out of our comfort zone when we come over here.
1: You know? Yes.
0: But if the individuals, if the individual couple say, hey, hang on, you know, chalo thodi si, we want some professional advice. Not advice, we don't give advice. You know, we guide them, we get them to reflect and think, you know, that zindagi mein ek hi tarika nahi hota, there are different perspectives, you know, that one can adopt, you know.
1: Yeah.
0: When we say we are couple therapist, we are actually trained to do couple therapy. That is a part of our qualification.
1: Okay.
0: So couple therapists, you know, there are certain psychologists who then specialize as couple therapists. And then there are couple therapists who have actually specialized as couple therapists.
1: Okay.
0: So I have specialized and qualified as a couple therapist. I've also specialized and qualified as a family therapist and a family dispute resolution practitioner.
1: आज आपसे हम relationship and counseling उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, पर मुझे लग रहा है कि आपके पास आपके अनुभव का बहुत बड़ा खजाना है, जो कि एक छोटे से सेशन में हम सब हमारे श्रोतागंज के साथ नहीं साझा कर सकते हैं. तो आपसे फिर से बातचीत करनी होगी और बहुत सारा समय निकाल के, तो हम आपसे फ्यूचर में आपसे फिर से बात करना चाहेंगे. और हमारे जो भी सुनने वाले हैं, यदि आपके पास मुक्तेश जी के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में जब भी मुक्तेश जी हमारे साथ जुड़ेंगी, हम उनसे फिर से बात करेंगे और आपसे और जानेंगे कि आप किस तरह हमारे समाज में लोगों की सहायता कर रही हैं.
0: Thank you so much, Palvi. Thank you so much. Hope it's an initial session just to convey to the community that, look, there are services. There's a service that is culturally sensitive. Hindi mein bhi baat kar lete hain, Urdu mein bhi kar lete hain, Punjabi mein bhi kar lete hain, English bhi bol lete hain thodi thodi.
1: हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आशा है कि आपसे फिर से बातचीत होगी. धन्यवाद.
0: Thank you, Palvi. Thank you.
2: पिछले 3 दशकों से आपका अपना इंडियन प्रोग्राम गीतांजलि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 3ZZZ 92.3 FM का एक अहम हिस्सा है। 3ZZZ.com.au वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर अपना सपोर्ट आपके लोकल इंडियन रेडियो स्टेशन को दीजिए। एनुअल मेंबरशिप $16, सीनियर या कंसेशन कार्ड होल्डर्स मात्र $11। योर सपोर्ट इज द लाइफलाइन ऑफ दिस स्टेशन। थैंक यू।
1: ये हमारा मेंबरशिप ड्राइव का महीना चल रहा है। यदि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने हेतु हमारे प्रोग्राम के मेंबर बने। आइए पेश है कुछ कम्युनिटी सूचनाएं। नाट्य दर्पण अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है 20 जून को। वेन्यू है चैंडलर कम्युनिटी थिएटर, कीसबरो। नाटक प्रस्तुति शादी सिलेबस। ये एक मज़ेदार और पारिवारिक नाटक है जो शादी, उम्मीदों और उन बातों को दर्शाता है जिन्हें हमने कभी पढ़ा नहीं लेकिन जीवन में निभाने की उम्मीद की जाती है। टिकट्स के लिए trybooking.com में जा सकते हैं। हाल ही में काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया अनीश रंजन जी ने OCI कार्ड्स पासपोर्ट रिन्यूअल्स के बारे में एक जानकारी दी है।
3: ये एक खुशखबरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि VFS सेंटर जो अभी स्वैनसन स्ट्रीट में फंक्शन कर रहा है उस ऑफिस को हम चेंज कर रहे हैं और नया VFS का ऑफिस उसका इनॉग्रेशन होगा सेंट किल्डा रोड में अगले 5-6 हफ्तों में। तो उसके बाद क्योंकि नए बिल्डिंग में 15-16 काउंटर्स हो सकता है तो उससे ज्यादा हम सर्विस दे पाएंगे। और अभी जो अपॉइंटमेंट साइकिल का प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट साइकिल मीन्स जितने टाइम में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आज अगर मैं एक पासपोर्ट या OCI कार्ड या वीसा के लिए अप्लाई करता हूँ, अर्लिएस्ट अपॉइंटमेंट जब मिलेगा उस डेट को हम अपॉइंटमेंट साइकिल बोलते हैं 4 वीक्स, विच मीन्स आपको फर्स्ट पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिलता है 4 वीक्स के बाद। तो वो कम होगा क्योंकि ज्यादा काउंटर होगा और काउंटर में VFS स्टाफ बैठेगा और उस वजह से आई थिंक काफी जो अपॉइंटमेंट साइकिल लंबी चल रहा है पासपोर्ट, PCC और OCI और अदर सर्विसेज का, तो बहुत कम हो जाएगा। एंड वी विल सी की और किस किस तरह इस सर्विस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक साल पहले जिस एफिशिएंसी के साथ कॉन्सुलर सर्विसेज यहाँ पे होता था उस स्पीड, उस रफ्तार, उस एफिशिएंसी वापस लेकर आने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट वी विल गो बैक टू हैविंग एक्सेलेंट सर्विसेज विच वर बीइंग प्रोवाइडेड 1 year before.

दादा भाई फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, जो हिंदी सिनेमा से सबसे ज्यादा समय तक जुड़े रहे और बेहद कामयाब और मशहूर रहे, खास करके अपनी गजलों के लिए। उन्होंने फिल्मों के जरिए भी और अपनी शायरी में भी गजलों को बहुत ऊंचा मकाम दिलाया। उन्होंने ही हिंदी फिल्मों को एक नया स्टाइल भी दिया, जो कहलाया रोमांटिक कॉमेडी ड्यूएट्स, जो 50s और 60s में बहुत चले थे। इन ड्यूएट्स के पीछे किस्सा ये है कि एक बार एक पार्टी में फिल्मी ड्यूएट्स की कम होती लोकप्रियता पे लोग बात कर रहे थे, तो मजरू साहब ने कहा कि ये तो गीतकार का दोष है, और ये वादा भी किया वे जल्दी ही एक दो गाना लिखेंगे। तब बर्मनदा बोले कि मेरे लिए क्यों नहीं लिखते आप, और बस बन गई उन दोनों की सुपरहिट जोड़ी, जिसने पेइंग गेस्ट, 9 तो 11, चलती का नाम गाड़ी, काला पानी जैसी कितने ही फिल्मों में रोमांटिक डुएट्स दिए।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था और उनका असली नाम था असरार उल हसन खान। उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई मदरसे में, जहां उन्हें अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा मिली। उनके पिता की ख्वाहिश थी कि वे डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने लखनऊ से यूनानी चिकित्सा में ग्रेजुएशन किया और हकीम बन गए। कॉलेज के दिनों में ही संगीत से ऐसा लगाव हुआ कि म्यूजिक कॉलेज में चुपचाप दाखिला भी ले लिया, मगर जब उनके वालिद को पता चला तो म्यूजिक कॉलेज छोड़ना पड़ा। पर अपनी प्रैक्टिस में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहा तो वे सुल्तानपुर वापस लौटे। उसी दौरान उन्होंने शायरी शुरू की और सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी गज़ल पढ़ी तो लोगों को बहुत पसंद आई, और इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दिलचस्पी शायरी में ज़्यादा है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने नौकरी छोड़कर शायरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जल्दी ही मुशायरों की जान बन गए। ऐसे ही एक मुशायरे में मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी ने उन्हें सुना और वह युवा मजरू से बेहद प्रभावित हुए और फिर उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को अपना शागिर्द बना लिया। इसके बाद उनकी शायरी दिन पर दिन निखरती चली गई। 1945 की एक बात है जब मजरू सुल्तानपुरी जिगर मुरादाबादी के साथ एक मुशायरे में शामिल होने के लिए मुंबई गए थे। तब वहां उन्हें सुनने के बाद उस समय के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक एस आर कारदार ने मजरू सुल्तानपुरी को अपनी अगली फिल्म शाहजहां में गीत लिखने का ऑफर दिया। ए आर कार उन्हें संगीतकार नौशाद के पास लेकर गए। नौशाद ने उन्हें धुन दे के उस पे बोल लिखने को कहा। मजरू साहब ने लिखा, जब उसने गेसु बिखराए बादल आया झूम के। यह बात सबको पसंद आई और इस तरह मजरू सुल्तानपुरी 500 रुपये की तनख्वाह पर कारदार फिल्म से जुड़ गए। शाहजहां फिल्म में 10 गाने थे, उसमें 8 मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। उनका ये गीत जब दिल ही टूट गया तो केएल सहगल को इतना पसंद था कि उन्होंने कहा था कि उनकी मौत पर उनकी अर्थी के साथ यही गाना बजाया जाए। शाहजहां फिल्म में 10 गाने थे, उसमें 8 मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। उनका ये गीत जब दिल ही टूट गया तो केएल सहगल को इतना पसंद था कि उन्होंने कहा था कि उनकी मौत पर उनकी अर्थी के साथ यही गाना बजाया जाए। मजरू सुल्तानपुरी प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे और उनकी इंकलाबी शायरी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब वे जेल में थे तो उन्हीं दिनों उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस समय उनके परिवार को काफी तंगी से गुजरना पड़ा था। माफी मांगने की शर्त पे वे रिहा हो सकते थे, पर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। वे बहुत उसूल पसंद इंसान थे तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। ऐसे समय में उनकी मदद को राज कपूर सामने आए और उनके आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए उनकी मदद की। उन्होंने मजरू साहब को एक गीत लिखने को कहा और उसके लिए उन्हें करीब 1000 रुपये दिए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये गीत आगे जाकर राज कपूर जी ने अपनी फिल्म तीसरी कसम के लिए इस्तेमाल किया।

जेल से रिहा होने के बाद मजरू सुल्तानपुरी को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिली, जिसमें म्यूजिक था ओपी नैयर का। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखना पड़ा था।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा जा जा।
1: सुन सुन।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का फिल्मी सफर नौशाद के साथ शुरू हुआ था, जिससे उन्होंने सीखा था कि फिल्मी गानों को कैसे लिखना चाहिए।

ओपी नैयर, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम, चित्रगुप्त, उषा खन्ना, रवि, मदन मोहन, राजेश रोशन के साथ साथ आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मजरू सुल्तानपुरी ने करीब 40 फिल्मों में काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ मजरू सुल्तानपुरी जी ने करीब 40 फिल्मों में काम किया और उन्हें फिल्म दोस्ती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला।